हमारे स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 9:50 से थोड़ा सा ज्यादा और आज है 28 सितंबर। म्यूजिकल दिल्ली है ये। वैसे तो हर दिन खास होता है लेकिन कुछ दिन उसके लिए हम कह सकते हैं कि बहुत खास होता है। सितंबर का महीना जाने वाला है, ये वही महीना है जब हर सिंगार फूलता है, पानी बरसता है, धूप भी अच्छी लगती है और छांव भी अच्छी लगती है। ये वही महीना है जब बड़े सारे लोगों को याद किया जाता है, कई सारी बातें हम सब के पास होती हैं। तो एक बात है आपके लिए और वो ये है कि अटल पेंशन योजना के बारे में क्या आप जानते हैं? भारत सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा और निश्चित पेंशन प्रदान करना है। और इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं और इसकी बहुत सारी एलिजिबिलिटी है। ये सारी की सारी चीजें आप पढ़िए विस्तार से और जानिए इसके बारे में कि हाँ ये हमारे काम आ सकती है या नहीं। म्यूजिकल दिल्ली, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे।

खुशबू की साई में आइए बैठते हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ है ऐसा जिस पे हम लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, लेकिन अगर कोई गीत अच्छा लगे, कोई इंसान मन को भाए, किसी से मन मिल जाए, तो फिर जरा से प्यार में पूरा जीवन बीत जाता है और पता ही नहीं चलता।

ही देर में 10 बजने वाले हैं, समय होगा वो समाचारों का और उसके बाद दिल का मेल बॉक्स लेकर के हाजिर हो जाएंगे हम आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। बहुत सारी गीत, बहुत सारी बातें, तस्वीर है आपके लिए सिर्फ और सिर्फ यहीं एफएम गोल्ड पे। तो फिर कहीं मत जाइए, हमारे साथ यहीं बने रहिए आप।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी पर कल प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2026 के लिए दो दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आगामी रबी सीजन की तैयारियों और कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। आज से प्रस्तावित तीन दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। यह फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल से दो दिन तक दिल्ली के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में विशेष शिविरों का एक और चरण आयोजित किया जाएगा। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की है। इसके अंतर्गत एक साझा डिजिटल मंच पर पर्यटन से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं तक पहुंच मिल सकेगी। मंत्रालय ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के साथ मिलकर नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक तैयार करने की पहल की है। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। भगत सिंह का जन्म वर्ष 1907 में आज ही के दिन पंजाब के तत्कालीन लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। प्रधानमंत्री ने भी शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए एक वीडियो साझा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत रत्न लता मंगेशकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि लता मंगेशकर ने अपनी दिव्य गायन प्रतिभा से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय संगीत की दुनिया में लता मंगेशकर का अतुलनीय योगदान युगों तक स्मरणीय रहेगा। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले दो दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली चमकने के साथ आंधी और तेज हवाएं चल सकती हैं। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्रों में 179 ट्रैकर्स पर्वतारोहियों और उनके सहयोगी कर्मचारियों को सुरक्षित निकालने के लिए बचाव अभियान चलाया जा रहा है। ये लोग उत्तरकाशी और बागेश्वर जिलों में 13 अलग अलग ट्रैकिंग दलों में फंसे हुए हैं। तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: will be till the 30th of November. The final electoral roll will now be published on the 4th of December. Prime Minister Narendra Modi has paid tributes to freedom fighter Shahid Bhagat Singh on his birth anniversary today. In a social media post, Mr. Modi said that with indomitable courage and valour, Bhagat Singh infused new energy into the freedom movement. Prime Minister Narendra Modi has paid tributes to Bharat Ratna Lata Mangeshkar on her 97th birth anniversary today. In a social media post, Mr. Modi said that Lata Mangeshkar illuminated the name of India across the world with her divine singing talent. The Prime Minister added that Lata Mangeshkar not only adorned and enriched the country with her melodious notes, but also steadfastly encouraged every endeavour linked to the prosperity of India. In Asian Games, India will face Afghanistan in the second quarter-final of the men's cricket today at Korogi Sports Park in Nishin. The match will start at 10:30 a.m. Indian Standard Time. India advanced directly to the quarterfinals and aims to continue its winning streak. And that is the end of this news bulletin.
1: Namaskar. आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत की पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की आज 10वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की आतंकवाद रोधी नीति का नया उदाहरण बताया। नेपाल में तेज बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन में 21 लोगों की मौत और 5 लापता। अमेरिका ने ब्रिटेन में आतंकवादी हमले के संदेह में हुई गिरफ्तारियों के बाद अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा चेतावनी जारी की। और तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद की गई थी। इस हमले में 18 जवान शहीद हुए थे। वर्ष 2019 में बालाकोट और वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर से भी पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई। आकाशवाणी पर कल प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: सरकार ने पर्यटन

0: संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की है। इसके अंतर्गत एक साझा डिजिटल मंच पर पर्यटन से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं तक पहुंच मिल सकेगी। मंत्रालय ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के साथ मिलकर नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक तैयार करने की पहल की है। इसका लक्ष्य वर्ष 2028 के अंत तक 23,000 पर्यटन अनुभवों और होमस्टे को इस मंच से जोड़ना है और उन्हें बुक करने योग्य बनाना है। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल विश्व पर्यटन दिवस पर भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में इस परियोजना की शुरुआत की। मंत्रालय के अनुसार ONDC और इंटरनेशनल सेंटर फॉर DPI इनोवेशन एंड एडवांसमेंट ICDIA के सहयोग से विकसित किया जा रहा है, जो इस डिजिटल ढांचा से पर्यटन विकल्पों को अधिक सुलभ और विश्वसनीय बनाएगा। कार्यक्रम में पर्यटन सचिव भुवनेश कुमार ने कहा कि नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक की परिकल्पना एक टिकट एक पास की है, जिससे पूरे भारत को एक ही यात्रा अनुभव से जोड़ा जा सकेगा। इस डिजिटल ढांचे का उद्देश्य पर्यटकों को देश के अधिकतर स्थानों की जानकारी उपलब्ध कराना, यात्रा को सुविधाजनक बनाना, आसानी से बुकिंग और भुगतान की सुविधा देना तथा कागजी कार्रवाई कम करना है। दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास सेवा पखवाड़े के अंतर्गत कई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसका उद्देश्य सेवा की भावना, समुदाय की भागीदारी और देश के प्रति समर्पण को बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट।
2: विकसित भारत दौड़ 2026 के लिए भारतीय समुदाय के लोग बड़ी संख्या में एकजुट हुए। यह दौड़ भारतीय वाणिज्य दूतावास ने इंडियन पीपल्स फोरम IPF के साथ मिलकर मशहूर दुबई फ्रेम के पास आयोजित की थी। महावाणिज्य दूत डॉक्टर ई विष्णु वर्धन रेड्डी ने इस दौड़ को हरी झंडी दिखाई। इसमें लोगों ने बहुत उत्साह दिखाया और लगभग 3,000 लोगों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। यह कार्यक्रम विकसित भारत के प्रति सामूहिक संकल्प को दर्शाता है। इससे पहले भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने शहर के गुरु नानक दरबार गुरुद्वारे का दौरा भी किया, जहां उन्होंने इन आयोजनों के हिस्से के तौर पर लंगर सेवा में भाग लिया। ये गतिविधियां सेवा पखवाड़े के तहत हो रहे कार्यक्रम का हिस्सा हैं और दुबई में भारतीय समुदाय के लोगों के बीच सेवा की भावना और सामुदायिक जुड़ाव को उजागर करती हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के तौर पर काबुल के सरकारी अस्पताल के लिए जीवन रक्षक दवाओं और चिकित्सा सामग्री की एक खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अफगान के लोगों के लिए भारत की सहायता में स्वास्थ्य क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में 4 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से 21 लोगों की मौत हुई है, जबकि 5 लोग लापता और 5 अन्य घायल हैं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार सबसे अधिक 14 लोगों की मौत भूस्खलन से हुई। खराब मौसम से देश भर में 247 परिवार प्रभावित हैं, 260 मकान पूरी तरह नष्ट और 80 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण 24 से 27 सितंबर के बीच नेपाल के कई हिस्सों में अत्यधिक तेज बारिश हुई। जलस्तर बढ़ने और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए करीब 3,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इस बीच मध्य नेपाल में नारायणी नदी का जलस्तर 9 मीटर के चेतावनी स्तर को पार कर बस्तियों में पहुंच गया है। लंदन स्थित अमरीकी दूतावास ने ब्रिटेन में रह रहे या यात्रा कर रहे अमरीकी नागरिकों के लिए सुरक्षा चेतावनी जारी की है। ये चेतावनी फेयरफोर्ड में रॉयल एयरफोर्स बेस के पास आतंकवादी हमले की तैयारी के संदेह में कई लोगों की गिरफ्तारी के बाद की गई है। दूतावास के अनुसार ब्रिटेन में आतंकवादी हमले की आशंका बहुत अधिक है। दूतावास ने विशेष रूप से चेतावनी दी है कि अमरीकी हितों को भी निशाना बनाया जा सकता है। अमरीकी नागरिकों से सतर्क रहने, अपने आसपास की गतिविधियों पर नजर रखने, व्यक्तिगत सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने और अपने परिवार तथा मित्रों को अपनी स्थिति की जानकारी देते रहने को कहा गया है। उन्हें स्थानीय मीडिया से लगातार अपडेट लेते रहने और सुरक्षा संबंधी सूचनाओं के लिए अमरीकी विदेश विभाग के स्मार्ट ट्रेवलर एनरोलमेंट प्रोग्राम

0: नाम एसटीईपी में पंजीकरण कराने की भी सलाह दी गई है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और ब्रिटेन की सुरक्षा एजेंसियों के संयुक्त अभियान की सराहना की थी। उन्होंने कहा कि इस अभियान में इंग्लैंड के एक सैन्य हवाई अड्डे के पास विस्फोटक संबंधी अपराधों के संदेह में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक ने कल अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। ये उनका दूसरा कार्यकाल है। इस घोषणा के बाद राष्ट्रपति चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। वुसिक प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के राजनीतिक सहयोगी हैं। 5 साल का दूसरा कार्यकाल समाप्त होने से 7 महीने पहले वुसिक का इस्तीफा सर्बिया में 25 अक्टूबर को होने वाले संसदीय चुनाव के प्रचार के बीच आया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
1: तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। 296 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 41 ओवर और 4 गेंद में 2 विकेट खोकर 300 रन बनाकर जीत हासिल की। विराट कोहली ने नाबाद 139 रन और कप्तान शुभमन गिल ने 110 रन बनाकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। ये विराट का एक दिवसीय क्रिकेट में 55वां शतक है। इसके साथ ही वो सचिन तेंदुलकर के बाद एक दिवसीय क्रिकेट में 15,000 रन पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए और उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। अब बात एशियाई खेलों की। एशियाई खेलों के 9वें दिन आज पुरुष क्रिकेट के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में वर्तमान चैंपियन भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। इसके अलावा मुक्केबाजी, एथलेटिक्स, निशानेबाजी और हॉकी में भी भारत अपनी चुनौती पेश करेगा। इससे पहले कल भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य सहित कुल 37 पदक लेकर 12वें स्थान पर है।
0: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की आज 10वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की आतंकवाद रोधी नीति का नया उदाहरण बताया। नेपाल में तेज बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन में 21 लोगों की मौत और 5 लापता। अमेरिका ने ब्रिटेन में आतंकवादी हमले के संदेह में हुई गिरफ्तारियों के बाद अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा चेतावनी जारी की। और तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हर दिल गाएगा क्योंकि हर गीत में भावनाओं की बात है। उनकी आवाज में मिठास है, सुरों की मल्लिका संगीत की शान है। लता जी सचमुच में बहुत सारे भावनाओं की पहचान है। दिल का मेल बॉक्स है ये आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे आप सबका स्वागत है। दिल का मेल बॉक्स में हमें हर पल हमारी खुशियों से भरा रहे ऐसी आप कामना करते हैं, हमें मेल करते हैं, थैंक यू वेरी मच। तो ये है जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज, आयुषी, रमेश चंद, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, जगताप है। मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़ हैं, कविता कर्ण, शक्ति, रिया, जया और दर्शन भाई ये कहते हैं एनी सॉन्ग। और हर गाना लता जी की आवाज में अगर वो गाना है तो फिर हम सबके दिल के करीब है। दिल का मेल बॉक्स है ये आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। एफएम गोल्ड eirdelhi@gmail.com पे आपने हमें किया मेल, बताया अपना नाम, अपने शहर का नाम, जैसे कि इन्होंने कहा गांव टोरोवाल, जिला नवा

शहर पंजाब से गगनदीप चित्रगुप्ता, तृप्ता कुमारी थांती, डॉक्टर प्रियंका, प्रशांत, प्रियम, बेबी वामिका और वाणी धांती, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना गुरवंश सिंह जौड़ा और मलयना सरधना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब संयम मुस्कान, मास्टर जीवीएम जैन और इसके अलावा अनीता वर्मा है द्वारका दिल्ली से। आप सब याद कर रहे हैं आज एक ऐसी पर्सनालिटी को क्योंकि आज है 28 सितंबर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि हर दिन खास होता है लेकिन कुछ दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है और आज ही लता जी, जी हाँ लता मंगेशकर जिनका जन्म हुआ और उन्हीं के गाने, उन्हीं की चॉइसेस, उन्हीं के बारे में बहुत कुछ आप लोग लिख के भेज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वर कोकिला लता मंगेशकर 28 सितंबर 1929 में इंदौर को पैदा हुई और उसके बाद जो कहानी है हम सबके सामने है।

लता जी की आवाज फिल्म का नाम दस्तक और आपका नाम सौराष्ट्र राजकोट से जूली जगदीश गुजराती प्राची और प्रवीण पुजारी छोटी बलिया मुंबई करजत से अहमद भाई फूलवाले इमरान अहमद फूलवाले आमना आसमा और नसरीन इकबाल अहमद

और समस्त फूल वाले परिवार, सौंगा धमतरी से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार चंदन, हे यांश कुमार चंदन, गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खीलू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाज शेख, दानिश, अमन आफरीदी और मुक्कम पोस्ट फूल चिंचोली पढ़रपुर से जाकिर, सुमैया, सुबान, समीर, सलमा, मुमताज, मुलानी और दिलशाद है नसीर, चाचा, चाची और इनके साथ साथ पूरा का पूरा इनका परिवार। फजल का पंजाब खेड़ा परिवार, भूषण खेड़ा, विशु, विशार और शालिनी है, टिवानशी है, वाणी खेड़ा है और बी खेड़ा, जीवन सिंह बुक, समस्त पूरा का पूरा इनका परिवार है और लता जी की आवाज़ लता जी को याद कर रहे हैं। और मैं आपको वैसे याद दिला दूँ, आज कलाकार बेमिसाल में शबनम के साथ आप ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि बातें होंगी लता जी की और गाने भी होंगे उन्हीं के, सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।

दिल की गहराइयों से पसंद किया ये गाना ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू जामुन देवी साहू राजू लल्ला पूजा प्रांजल समीक्षा

0: बेबी आराध्या साहू। बेबी आराध्या को ये गाना समझ में आ गया, कितनी अच्छी बात है। बबलू कश्यप, अशरफ अली, नवाब अहमद, शबाना, संजय और अरहान दिल्ली से, उत्तम नगर दिल्ली से, बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल और ये है दिल का मेल बॉक्स सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पे।
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
2: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
3: मेरे वाले में नेडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
4: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
5: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
7: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विथ इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
8: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
9: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
8: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
9: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
8: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
9: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी

दिल का मेल बॉक्स है ये। पहाड़गंज मुताली ढांढा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक कहते हैं कि कोई भी गाना हर गाने में हमारी बात है। इसके साथ साथ मोहम्मद कुमार हैं, सुमेरा हैं, धर्मेंद्र, दिलावर, जय जय जय, बहुत सारे जय के हमारे पास मैसेजेस आए हैं। एसपी गोयल साहब हैं, जाकिर हैं, दिलावर खान हैं, धर्मेंद्र जी हैं, सुमेरा हैं और बहुत सारे लोग अपनी अपनी चॉइस, अपनी अपनी बात बता रहे हैं, जिसके लिए हम हर बार की तरह कहना चाहते हैं थैंक यू वेरी मच, क्योंकि ये है दिल का मेल बॉक्स आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो आप इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए, अपनी चॉइसेस हमें बताते रहिए। फिलहाल बजने वाले हैं 11, समय है ये समाचारों का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी पर कल प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन एशियन अवसंरचना निवेश बैंक की 11वीं वार्षिक बैठक और निवेशक संवाद 2026 में भाग लेने के लिए कतर की राजधानी दोहा पहुंच गई हैं। इस वार्षिक बैठक में सदस्य प्रतिनिधिमंडल, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष बैंक की रणनीतिक दिशा, संचालन प्राथमिकताओं और भविष्य के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने घोषणा की है कि आज से शुरू होने वाली 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित कर दी गई है। ये निर्णय भारतीय

0: बैंक संघ के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। सोशल मीडिया पोस्ट में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने कहा है कि यह निर्णय कल रात भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हड़ताल से संबंधित मुद्दों पर हुई बैठक के बाद लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल से दो दिन तक दिल्ली के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षा संस्थानों में विशेष शिविरों का एक और चरण आयोजित किया जाएगा। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की है। इसके अंतर्गत एक साझा डिजिटल मंच पर पर्यटन से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं तक पहुंच मिल सकेगी। मंत्रालय ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ मिलकर नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक तैयार करने की पहल की है। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए एक वीडियो साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि भगत सिंह ने कम उम्र में ही मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत रत्न लता मंगेशकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि लता मंगेशकर ने अपने दिव्य गायन प्रतिभा से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 46वें शतरंज ओलंपियाड में नोना ग्रैपिंटशिवाली ट्रॉफी बरकरार रखने पर भारतीय शतरंज खिलाड़ियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने खिलाड़ियों के जुनून और दृढ़ संकल्प की सराहना की। जापान के आइची नागोया में एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत और अफगानिस्तान के बीच क्वार्टर फाइनल मैच खराब मौसम के कारण रद्द होने के कारण रैंकिंग के लिहाज से भारत को सेमीफाइनल में प्रवेश मिल गया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला नेपाल और श्रीलंका के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। भारतीय शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज सुबह के सत्र में 1% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 730 अंक गिरकर 73,170 पर और निफ्टी 231 अंक गिरकर 22,909 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. India marks the 10th anniversary of surgical strikes that demonstrated to the world a new example of Narendra Modi government's counter-terrorism policy. On September 28th and 29th in 2016, Indian Army carried out targeted surgical strikes on terrorist launch pads across the line of control, or LOC, in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. The operation was launched as a direct and decisive military response to the Uri terror attack earlier that month, where 19 Indian soldiers lost their lives. The anniversary highlights a decade of evolved national security measures. In his Mann Ki Baat program on Akashvani yesterday, Prime Minister Narendra Modi described the 2016 surgical strike against terrorist hideouts as a historic milestone. He said the surgical strike highlighted the role of the Indian Army in carrying out the operation across the LOC.
2: 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। LOC के उस पार जाकर हमारे वीर जवानों ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी, वो देख दुनिया हैरान थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। आतंकवादी हमलों के कारण भारत ने लंबे समय तक जो दर्द झेला था, सर्जिकल स्ट्राइक उस कष्ट के खिलाफ हमारी निर्णायक प्रतिक्रिया थी।
1: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has reached Doha in Qatar to participate in the 11th annual meeting of the Asian Infrastructure

11:10 हो गए हैं। ये समय होता है तस्वीर का। धूल उड़ी थी रणभूमि में, गूंजी शंख की तान, कुरुक्षेत्र की धरती ने देखा धर्म अधर्म का मान। अर्जुन खड़ा था चिंतित होकर सामने अपना कुल, कृष्णा ने तब गीत सुनाई मिटा दिया मन का शूल। कुरुक्षेत्र केवल रण नहीं, जीवन का संदेश है, कर्तव्य पथ पर बढ़ते जाना यही इसका उपदेश है। तो फिर आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं जहाँ पे आपको लेके जाऊंगी, जिस जगह की तस्वीर दिखाऊंगी, उस जगह का नाम क्या है, और वो है कुरुक्षेत्र, हरियाणा का कुरुक्षेत्र, जो बहुत ही पास में है और बहुत ही दिल्ली के बहुत पास है और बहुत सारे लोगों के दिल के बहुत करीब।

कुरुक्षेत्र सिर्फ इतिहास का एक मैदान नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी बात है जो हम सब के साथ चलती रहती है, जो कभी हमारे अंदर होती है। हमें जिंदगी जब दो रास्तों पे खड़ा कर देती है, तब हमारा मन कहता है कि रुक जाओ, लेकिन हमारा कर्तव्य कहता है कि नहीं भाई, आगे बढ़ो। कभी नंदलाला बनके, कभी कान्हा बनके, और कभी अर्जुन के सारथी बनकर। तो चलिए, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे कुरुक्षेत्र के बारे में, कि आप हैरान हो जाएंगे और कहेंगे कि भाई, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली के आसपास वाले अगर कुरुक्षेत्र नहीं गए हैं तो वो ज़रूर इसका प्लान बनाएंगे और यही सोचेंगे कि इतनी पास वाली जगह और इतनी ख़ास वाली जगह हमसे भला कैसे मिस हो गई। कुरुक्षेत्र, अगर आप अभी हमें वहाँ पर सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली की एफएम गोल्ड चैनल को, तो आप हमें मेल करके अपने शहर के बारे में बता सकते हैं, नहीं तो फिर तस्वीर लेकर के मैं हूं ना आपके लिए सिर्फ और सिर्फ यहीं पे।

तस्वीर है आज कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र एक ऐसा शहर है जिसका अपने बड़े सारे इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे उनका अपना एक कैलेंडर है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव, सूर्य ग्रहण, छठ पूजा, चैत्र चौदस मेला, रत्नावली और हर अमावस। हर बार आप जब भी यहाँ पे जाएंगे, इस जो भी मैंने अभी नाम लिए इतने सारे इवेंट्स के, तो आपको वहाँ पे हर बार एक अलग अलग रंग देखने को मिलेगा। इसलिए ये शहर हमेशा लोगों के दिलों में और दिमाग में भी बसता है और वो सोचते हैं कि भाई कब हम जाएं। और ये जो इवेंट है ना इस शहर के, इसको आप डाउनलोड करके रखिए, हो सकता है कि आगे आने वाली यात्रा में आपको काम आए।

फिर हम चले कुरुक्षेत्र। यह है तस्वीर आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे और तस्वीर है आज कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र कैसे पहुंचे, तो सड़क मार्ग से अगर आप जाना चाहते हैं तो कुरुक्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 बहुत ही अच्छे से जुड़ा है, दिल्ली से लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पे है। ट्रेन की अगर बात करें तो कुरुक्षेत्र जंक्शन रेलवे स्टेशन देश के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। कुरुक्षेत्र मुख्य दिल्ली अम्बाला रेलवे लाइन पे है जो दिल्ली से लगभग 160 किलोमीटर, जैसा कि मैंने आपको बताया, करनाल से 34 किलोमीटर मतलब उत्तर की तरफ अगर जाएंगे और अम्बाला से 40 किलोमीटर दक्षिण की तरफ है। और कुरुक्षेत्र एक ऐसी जगह है जिसे पूरे भारत में अपनी महान संस्कृति और विरासत के लिए जाना जाता है। इसके बारे में अगर आप हिस्ट्री पढ़ने जाएंगे ना तो फिर बहुत ज्यादा आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल तो मैं आपको बता रही हूं कि इस शहर में जाइए, यहां की जो अनोखी चीजें हैं उनको देखिए, समझिए और बहुत सारी चीजें आपको याद आएंगी, क्योंकि यहाँ पे गीता का उपदेश, इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का अमर उपदेश दिया था। और इस क्षेत्र का नाम प्राचीन काल के राजा कुरु के नाम पर रखा गया। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि किस शहर में कौन सी नदी है, कौन से तालाब है, कौन सी ऐसी चीज है जो उसके साथ जुड़ती है और एक कहानी बनती है, क्योंकि जहां भी हम जाते हैं हर शहर की कोई ना कोई कहानी होती है और वो कहानी स्पेशली मुझे तो बड़ी लुभाती है। ये तस्वीर है कुरुक्षेत्र की, आपको कैसी लग रही है बताइएगा।

प्यार बांटते चलो और इसी तरह से यात्राओं पे साथ साथ हो चलो। तो कुरुक्षेत्र में हम क्या देखेंगे, ब्रह्म सरोवर देखेंगे, यहाँ का सबसे विशाल और पवित्र सरोवर ये माना जाता है। ज्योतिसर जाएंगे, वहां पे पवित्र स्थल है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और आपको मालूम है कि जब आप आस पास घूमेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो कि ऐसा लगेगा कि शायद ये साक्षी है उस समय की। थोड़ा सा आगे और जाइए तो सन्निहित सरोवर मिलेगा जिसे पवित्र नदियों का संगम स्थल माना जाता है। कुरुक्षेत्र को उसकी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के साथ साथ म्यूजियम के लिए भी जाना जाता है। मालूम है आपको कि ये शहर है एक ऐसा जिसको के लिए कहा जाता है कि ये शहर म्यूजियम का शहर है, और आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट म्यूजियम मिल जाएंगे, तो उनको बिल्कुल भी आप मिस मत कीजिएगा, देखने जाइएगा। और आपको हर म्यूजियम में अलग अलग कहानी मिलेगी। श्री कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र हरियाणा में, मतलब आप जब जाएंगे तो फिर आपको एक अलग कहानी मिलेगी। बगल में जाएंगे तो भारत में आपको कुरुक्षेत्र पैनोरामा और विज्ञान केंद्र वहां पे नजर आएगा। इसके साथ साथ वहां पे मतलब कम से कम 5 या 6 आपको म्यूजियम मिल जाएंगे, जो इसकी लिस्ट है काफी लंबी है। तो आप अगर इसके शौकीन हैं तो इसको देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये अपने आप में ना एक बहुत ही अच्छा और प्यारा सा अनुभव रहेगा। तस्वीर है ये। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 11:35 और ठीक 35 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
3: भारत ग्लोबल बिजनेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड,